पर पुजारी ना मने ते तरना सी जट तरने नू चढ़ गया गुस्सा ते गुस्से च तरना कहन लगा देखो पंडता हुण तक ते मैं हाथ जोड़े ने तू मन्या नहीं सीधी तरह एक ठाकुर दे दे

जद तक तू रोटी नहीं खाएगा मैं भी रोटी नहीं खानी पावे मेनू भुखिया मरना पवे। साध संगत जेड़े लोग ए गल कहंदे ने किथे रब

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उठापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जालो ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे,

आपे धरती आप है राहक आप जमाए पिसावे आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत।

कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो। कतहु भिखारी होय के मांग तू फिर तू भीख, कहु महादान होय के मांगो धन देत हो। कहु महा

कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

0: श्रवण करो प्रोफेसर दर्शन सिंह जी दी नवी कैसेट अपना घर।
1: जे वो अपनी मर्जी नाल आनंदपुर दी धरती ते बैठ के अपने जीवन का फैसला भी ना कर सके उन्हूं उत्थों ही रोक दिता जाए। जे वो अपनी मर्जी नाल अपनी ही राजधानी दिल्ली विच भी ना पहुंच सके रस्ते।
0: भाई हरजिंदर सिंह श्रीनगर वालियां दी नवी कैसेट

सिमरो सिमर सिमर सुख पावो सिमृत नाम मने सुख पाइए सिमरो सिमर सिमर सुख पावो।

मोहम्मद बिन तुगलक ने नामदेव नु पुछया, ऐ नामदेव, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तू मेरे को डरदा नहीं, किदे भरोसे ते

धरती दी पालना करने वाला ऐ बादशाह भगत लोग उस गोपाल राय की सेवा करते ने अकुल निरंजन जिदी कोई कुल नहीं।

सराय चा बड़ा वड़ा शैमियाना है तंबू है केड़ा ऐ बादशाह तू अपनी वास्ते तंबू लवाना है।

सरायचा है, तंबू है, इंसान जहाजा ते चढ़ लवे, राकटा ते चढ़ लवे, कितना भी यतन कर लवे, पर इस परमेश्वर दे तंबू विचू इंसान बाहर नहीं निकल सकता। ओदे घर विच बैकुंठ है, अते सपत लोक समान पूरी आले, ए जड़े पताल ने ए ओदे घर विच

बहुत है। उस गोपाल राय दे कार खेड कर दिए, कदे किसे नु मार देंदी है, कदे किसे नु मार देंदी है। इस करके ओ जिड़ा मेरा गोपाल राय है, जिदे कार सूरज चंद्रमा दीवे तरह ने, मौत जिड़ी है ओ दे कार

नामदेव ने बाणी च बयान कीता कि बादशाह कहन लगा ऐ नामदेव ऐ गां मरी हुई पई है इस नु जिंदा कर दे जे गां जिंदा ना हुई ता मैं तेनु जानो मार देंगा। नामदेव जी बादशाह दे ख्याल ते अपनी विचार शब्द विच

देव नो बन लिया ते बादशाह कह लगा देखो तेरा हर बीठल ए नामदेव दस मेनू तेरा बीठल तेरा भगवान कित्थे।

सात घड़िया का समा दिता, अगर सात घड़िया विच ए मरी हुई गां जिंदा ना हुई ते नामदेव नूं हाथी दे पैरां थले लताड़ दिता जावे। नामदेव नूं कैद कर ले, नामदेव दे नाल प्यार करन वाले मुहम्मद बिन तुगलक बादशाह दे कोल गए ते बादशाह नूं ए बेनती कीती।

देव नु छड़ दे नामे सर पर सोना ले नाम देव दे बराबर तोल के सोना ले ले पर भगत नु कुछ ना कहे।

कैद खाने पा दिता गया, सत घड़िया का समा दिता, पर सत घड़िया बीत गई, गऊ हाली तक जिंदा नहीं हुई। भगत जी आप बयान कर

बादशाह खुश होके भगत नामदेव ने बहुत सारा सोना चांदी भेंट किया, पर नामदेव जी ने वो सारा सोना चांदी गरीबां च वंड दिता। आप तुर पए। बादशाह ने एक बड़ा कीमती दुशाला कह लो, सेज कह लो, बड़ा कीमती दुशाला सेज नामदेव वास्ते अपने दरबारियां नु दिती। बादशाह ने दरबारियां नु कहा, जिथे नामदेव जी बैठन ऐसे जा नामदेव नु भेट कर देनी, ते नाले मेरे वल्लों कहना कि बादशाह दी इच्छा है कि ऐसे जा किसे नु दान नहीं करनी, ए वशा के तुसा आप उत्ते बैठना है। नामदेव जी तुर पए, नाल बादशाह दे दरबारी तुर पए। नदी किनारे भगत नामदेव जी बैठे ने।

पीसे जा, तुसा आप वर्तनी है, संभाल के रखनी। नामदेव जी ने ओ किम पीसे जा चुकी ते नदी विच सुट दिती। दरबारी वापस चले गए, बादशाह नु बेनती कीती, बादशाह भगत जी ने तुहाडी सेजा पानी विच सुट दिती। बादशाह नु बुरा भी लगा, गुस्सा भी आया, पर कर कुछ नहीं सी सकदा। दरबारियां दे नाल फिर बादशाह उस नदी किनारे भगत नामदेव दे कोल आया ते कहन लगा, भगत जी मैं बड़ी श्रद्धा नाल सेजा दिती सी, तुसा नदी विच सुट दिती। नामदेव जी कहन लगे, बादशाह तू संभालण वास्ते कहा सी, असी तेरी सेजा पानी विच संभाल दिती। बादशाह कहन लगा, महाराज जे संभाली है ता मैनू एक वारी दिखा दियो ताकि मैनू तसली हो जावे। उस वक्त भगत नामदेव जी कहन लगे, चंगा फिर बादशाह अपनी सेजा देखनी है ता पानी दिया लहरां वाल तक, जदू तेरी सेजा आवे ता पहचान लवे। बादशाह पानी दिया लहरां वाल तकन लग पे।

भगत नामदेव जी ने उस वक्त नदी किनारे बैठ के ये शब्द उचारिया, जे गुरु दयाल हो जाए मुरार कहंदे ने कृष्ण भगवान ता कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाती, अगर गुरु दयाल हो जाए ता उतरे पार इंसान संसार

अमृत वाणी बोले मिठी हो जाते। जे गुरु दयाल हो जाए पवन त्रैस हो जाए तिना लोगों की सोची हो जाती। गुरु दयाल हो जाए तो इंसान उची पदवी नूं

गुरु दयाल हो जाए, देहोरा फिरे देवरा कहते ने मंदिर ता ओ पूरे पत्थर दे बने हुए मंदिर घुमा दिंदा नामदेव नूं। जदों पंडता ने नीवी जादा समझ के मंदिर विचों कढ़िया सी ते नामदेव जी मंदिर दे पिछले पासे जाके बह गए सन ते परमेश्वर ने भगत बदले पूरा मंदिर घुमा दिता तो भगत जी कहंदे ने

ऐसे गुरु दी शरण विच रहिंदा है जेड़ा गुरु इन्ना कुछ देंदा है उस तो बगैर ए नामदेव किसी होर दी शरण नहीं।

उस परमेश्वर दे घर की है, भगत जी ने बयान किया। जांचे कर निकट वर्ती अर्जन, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजे, सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बानवे हेला, एते जी जांचे हैं करी, सर्व व्यापक अंतर अरी, प्रणवय नाम दियो तांची आन, सगल भगत जांचे निशान। ऐ बादशाह, ओ परमेश्वर, इतना ब्यांत है, ए जो मैं दसे है, ए ता कुछ भी नहीं, सब कुछ होता है, ओ बनान वाला है, प्रणवय नाम दियो तांची आन। नामदेव आखद है, ऐसे गोपाल राजे दी असी शरण विच हां, ते सारे भगत सारी दुनिया ओदा ओट ते आसरा लैंदी है। इस करके भाई, राजे हो ताकतवर हो ता मान ना करो, क्योंकि उस गोपाल राय तों कोई भी वड्डा नहीं।

हाथ दोनों गोडिया से रखे नहीं, कुत्ते सिर रखे। थोड़ी दूरों रावी नदी पे वगदी कान जेड़े ने कुछ सुनने दी कोशिश पे कर दे ने। ए बीबी पेंडू अनपढ़ है पर मन विच रब दा बड़ा प्यार है। तीन दिन हो गए ने इस बीबी नू ए आवाज सुन दे, रोज आंदी ए पति नू रोटी खवाण वास्ते। आवाज विच ऐसी खिच है, इत्थे बैठ के ए रोज आवाज सुन दी। अज तीसरा दिन है, कदी कदी आवाज सुनाई दिंदी, कदी पानी दे शोर विच गुम हो जांदी है। पर जदों आवाज सुनदी है तां मन खिंचिया जांदा है। कहन लगी मना चल के देखा ये गाण वाला कौन है। कहन लगी ढाडी भी सुनी देने, व्याहां दे विच गीत भी सुनी देने, गाई दे भी नहीं, पर एडी मिठी आवाज अज तक सुनी नहीं। चल के देखा भला कौन है गाण वाला। फिर डर भी लगता, पता नहीं कौन होवेगा। आखिर फैसला किया, खाली भांडे सिर ते रख के उस पासे तुर पई जिधरों आवाज आ रही। आवाज सुन के जिधरों आवाज आ रही है उस पासे ए बीबी

तीन दिन हो गए ने मैनू देखदे आ, ना तुसी किधरे गए ना आए, ना तुहाडे कोल कोई भांडा ना चुल्हा, तुसी खांदे की हो, किदे आसरे जींदे हो। ता ओ वजंतरी कहन लगा, बेटा सानू भुख भी लगदी, असी खाने भी आ, मैनू ता भुख लगदी रहिंदी है, पर जेड़ा मेरा मालक है वो ता नाम दे आसरे जींदा है। इस बीबी ने चार चपेरे निगाह दौड़ाई पर कोई नजर ना आया। कहन लगी तुहाडा मालक कित्थे? वजंतरी कहन लगा, बेटा वो जरा टहलण वास्ते गए ने। कहन लगी, साईं जी जे मैं दुध लैके आवां तुसी दुध पी लोगे? वजंतरी कहन लगा, हां बेटा जे कोई श्रद्धा ते प्यार दे नाल मेरे मालक नूं दुध भेट कर दे, वो टुट के दुध दी जगह पुत्र दे दिंदा है, पुत्र दा नां लिया। तां इस बीबी ने ठंडा होका भरिया, क्योंकि घर पुत्र कोई नहीं सी, थोड़ी जी आस बची कि शायद इथों कोई पुत्र मिल जावे। मत्था टेकिया ते घर चली गई दुध।

दुध वाला गड़वा के कीता कि पातशाह आप दियां दितियां दातां विचों दुध लैके हाजिर होई हैं, आप जी सुनो प्रवान करो। साहबा क्या बेटा, संसारी लोग तुहानू दुध पुत्र की लोड़ होंदी है, दुध तुसी छको, पुत्र का नां लिया। फिर मन विच ख्याल आया जे गुरु साहब टुट पैण, हो सकता है इथों मेरी झोली भर जावे। हाथ जोड़े के पातशाह दुध आप दियां बख्शियां होईयां दातां विच लैके आई है, आप जी प्रवान करो। गुरु साहबा ने दुध दे तीन हिस्से कीते, एक आप पीता, एक हिस्सा मरदाने ने पीता, एक हिस्सा इस बीबी ने दुध का पीता। सेवा कीती, नमस्कार करके वापस अपने घर

हरी तू बगैर मैं क्यों जीवा, क्योंकि उदे तू बगैर ते जीवना कुछ भी नहीं। गुरु साहब जी शब्द पढ़ रहे ने, ए दुदा दूर सारे एक दरखत दे ओले लुक के बैठ गए है, देखण वास्ते कि हुण की हुंदा। धन गुरु नानक साहब ने शब्द का भोग पाया, बीबी ने दुध सामने रखे, गुरु साहबां ने दुध दे चार

दोदा कह लगा नहीं पातशाह आप दा दिता बहुत खुश है। महापुरुषा दे तीन बचन होंदे ने, तीसरा बचन कीता दोदिया कुछ मंग लै। ता दोदा कहन लगा पातशाह जे तुखे हो ता ए वर दियो, बहुत सारी जमीन होवे। जिमीदार सी दोदा, बहुत सारी जमीन होवे, लवेरियां मच्छा गावां होन, दो तीन बलदा दिया जोड़ियां होन, सोने मकान होन। साहब जी कहन लगे ये सब कुछ मिल जाएगा, कुछ और मंग ले। कहन लगा बस पातशाह और कुछ नहीं चाहिए। मर्दाना कोल बैठा है, होली जी मर्दाना कहन लगा दुदिया सतगुरु जी तुठे ने नाम दी दात मंग ले, ते जिहड़ी चीज बारे ज्ञान ना होवे ओ चीज आपां लैंदे नी। दोदा होली जी कोलों कहन लगा मैनू तां जमीन मझां गावां चाहीदियां ने, मैं नाम की करना है, मेरे किस तों किया तां होली, पर सतगुरां सुन लिया ते नाले हस पए। कहन लगे दोदिया ये सब कुछ मिलेगा, तेरी घरवाली सतसंगण है, तेरी घरवाली दे सदका जा तेनू नाम दी दात भी प्राप्त होवेगी। कई बीबियां इन्ने भागा वालिया हुंदियां ने कि जिन्हां दी सदका कुलां तर जांदियां ने। हुण दोदा भी सतसंगी बन गए, होर भी जिन्ने जिन्ने गुरु नानक दी सोभा सुनी ओ भी आण लग पए। जेड़ा भी आंदा है फिर होर किधरे नहीं जांदा, जंगल दे विच आनंद ही आनंद हो गया हर पास।

अज तू अगे आया अचानक दिखना बंद हो गया नजर कुछ नहीं आता एकदम रुक गया पिछा मुड़ के देखे ता थोड़ा थोड़ा नजर आंदा है पूरा नहीं दिसदा अन्ना हो गया अगे जांदा है कुछ नहीं दिखता पिछे मुड़दा है चौला पहनदा है पूरा नहीं दिसदा ना अगे जान हुंदा है ना पिछे मुड़न हुंदा है नाल दे साथी बड़े हैरान ने कि करोड़िए नूं की हो गया है करोड़िया कहंदा मैनूं दिसदा कुछ नहीं अगे जाना बिल्कुल अन्ना हो जाना वा पिछे मुड़दा वा ता भी नहीं दिसदा पूरा बड़ा परेशान हो गया ए दुनिया कुदरती कोई असूल ही ऐसा है कि कुछ लोग बंदगी करते नहीं कुछ लोग बंदगी करने वाले नु चंगे नहीं समझते उन्हां दी कोशिश होंदी कि जड़ा इंसान बंदगी कर रहा है इन्हू मैं खत्म कर दी ये बंदगी ना करे अज करोड़िया भी इसे वास्ते आया कि गुरु नानक का प्रताप वध रहा है ये तो निंदकां दी चुक सी ते दूसरा माण ये कि मैं माया वाला वा मेरी धरती ते गुरु नानक ने कब्जा किया मैं उन्हूं खत्म करना है पर अन्ना हो गया ना अगे जाया जांदा ना पिछे मुड़िया जांदा ता इन्ने नूं ओ पागां वाली बीबी अते उहदा पति दोदा खेतां विच कम करके आ रहे सन करोड़िए नूं देखिया ता समझ गए कि धन गुरु नानक साहब नूं ए मारन वास्ते जा रहे हैं पर अन्ना हो गया उस बीबी ने आवाज दिती ओ करोड़िया शोक दी कांग अगे हिक ना डा जदों दरिया विच हड़ आया होवे तां उहदे सामने छाती नहीं डाई दी दरिया रोड़ के लै जांदा है गुरु नानक दरिया है समुंदर है ते एवें अगे हिक डाई जांदा है जे कुछ लैणा ही थले उतर घोड़े तू डांग सुट साथी वापस मोड़ मन विच निम्रता लिया वो गुरु नानक नूं मारन चले जड़ा मरिया नूं जीवन दिंदा है इस जमीन बदले वो दारशां दा मालक है दाता वो दिंदा है तो उस गुरु नानक नूं मारन चले इस साहब जी बाणी विच कहंदे ने जिस अगे जोर ना चले खले की चरदास जिथे जोर ना चले उथे हाथ जोड़ के फिर अरदास करनी पैंदी हुण करोड़िए दा जोर कोई नहीं चलदा डांग सुटी घोड़े तो थले उतरिया पैरां विच जुत्ती लाई साथी वापस मोड़े मन विच निम्रता लियांदे ता दिखण लग पिया दोदा अगे वधिया करोड़िए दी बांह फड़ लई क्या करोड़िया तू गुरु नानक नूं मारन आया सी पर चल देख गुरु नानक तेनूं की कहंदा है ते करोड़िया डरन लग पिया कि किधरे गुरु नानक साहब कोई सराफ ना दे दे मैं तां मेरी कुल दा ही नास हो जावे ए डरदा डरदा दोते दे नाल तुरिया जा रहे है दरबार विच पहुंचे संगत बैठी है तां गुरु नानक साहब शब्द पढ़ रहे हैं दोते ने मत्था टेके

ये संसार एक वृक्ष है, इस वृक्ष ते सारे ही पंखी बैठे हैं। आप जानते हो कि पंखी अपनी अपनी चोग चुग के जदों सूरज लथ जांदा रात पैण लगदी है तां वृक्ष ते आके कट्ठे हो जांदे हैं। इसे तरह यह संसार वृक्ष है, 84 लख जूना विचों परमदा परमदा अपने कर्मां दा खटिया खांदा खांदा ए वृक्ष रूपी इस संसार ते आउंदा है मनुष्या जन्म प्राप्त करके। जिस तरह पिंडां विच शहरां विच हर एक मनुख ने अपना अपना घर बनाया, इसे तरह वृक्ष ते भी अपने अपने आलने बनाए होंदे हन। पंखियां ने ओ आके बैंदे हन ते जां रात बीती सवेरे अपने अपने राही पैंदे हन, उड़ जांदे हन। इसे तरह ए मनुष्या जन्म भी एक वृक्ष है। मनुष्या जन्म पंछी रूप होके संसार ते आउंदा, मनुख अपने अपने कर्म भोग भोगदा होया। जिन्हां ने तां भाई इत्थे आके अपना जीवन मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईयां तत मिठा बोलदे हन, नेव चलदे हन, अपनी किरत कमाई विचों चंगे पासे भले पासे लाउंदे हन। सास ग्रास नाम जप के जो जांदे हन उन्हां दा आउणा सफल हो जांदा है, ते जेड़े इत्थे आके माड़े कर्म करके जांदे हन उन्हां नूं फिर 84 लख जून दे गेड़े विच दुख भोगने पैंदे हन। इस लई हजूर कहंदे हन भाई ए मनुष्या जन्म प्राप्त होया है, इस नूं जप जप के सफल करना। जिस तरह दिन चढ़दियां पंछी अपनी अपनी चोग चुगन लई अपने अपने कर्मां दा खटिया खान लई उड़ जांदे हन, इसे तरह जदों काल रूपी सूरज चढ़दा ते मनुख भी फिर ए पंज भूतक शरीर छड के तुर जांदा। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन किस नाल कीचै दोस्ती सब जग चलन हार, किदे नाल दोस्ती करिए। ख्याल कीता हो सकदा है कि राजा सुखी होवे पर ओ तां सब तो दुखी है। हो सकदा महल माड़ियां विच रहन नाल कोई सुख प्राप्त होवे ओ भी नहीं है। हो सकदा चंगे बस्तर पहनन नाल जां गहने पहनन नाल सुख मिल जाए ओ भी नहीं है, क्योंकि सुख तां हरी दे नाम विच है, सुख तां परमेश्वर दी भगती विच है। इस लई गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन सब जग चलन हा।

गरीब नवाज दो पैर दिन दे बीत चुके हैं, आने वाले दो पैर पता नहीं वेखांगा कि ना वेखांगा। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे भाई बाला तू भी मौत नू दूर समझदा है, मौत इतनी दूर नहीं है। फिर दोहा ने हाथ जोड़े ओ मेरा दे साई आप कृपा करो आप दसो मौत नू कितनी को नेड़े समझते हो। धन गुरु नानक पातशाह जी ने तनाशरी राग विच शब्द उचारण कीता आख्या हम आदमी हां एक दमी दम आ गया ता आदमी नहीं ते मिट्टी दी तेरी पई है। इतना को ही मनुख दी होंद है के एक गिठ और चार उंगलां स्वास मनुख दा बार आउंदा है, पता नहीं भाई मुड़ेगा के ना मुड़ेगा। ए एक अख दे पलक विच पाना वरत सकदा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह कहंदे हन भाई इस जल दे बुद्ध बुदे दा कितना कु है जीवन, बस इतना ही है कि मोहलत मौत ना जाना, पल दे विच पता नहीं की हो जाना। इसलिए गुरु नानक

कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इना सारिया दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संसे दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है, गुण निधान हर नामा जप पूर।

सुन बेद बिरंत बिचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत श्री।

सारे सुख व्यापक हो गए। गुरु ने सारिया इच्छा पूर्ण कीतियां पर नाम की इच्छा ना आई। बाबा जी कहते ने लोगों दिया निगाह विच ओ वड्डा मनुख

प्रहलाद जब तुझ राख ले हर जियो हर नाथ शुमार बजाया गुरमुखान पर तीत है हर जियो मन मुख भरम भुलाया।

0: सुहावा जानो जस गावे जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जैसे अठ सठ तीर्थ परस किए जुग चार चढ़ो कैलाश
1: जिना गुरमुखां दे कदम सत संगत वाले चल के जाते हैं। किड्डा वड्डा महात्म भाई साहब भाई गुरदास जी ने दसिया है कि जो गुरमुख जन सत संगत च बह के जपते हैं सतनाम, संगत च बैठ के वाहेगुरु जपन का किड्डा वड्डा महात्म है, पर एक शर्त है कि जपे गुरु चरणा दे नाल मन नूं जोड़े। जैसे अठ सठ तीर्थ परस